0: इस टाइम चेक,
1: इस समय सूचक का सातवां
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केंद्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 59 63 98 550 77 061 र 98 550 77 53
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस लैब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 93 440 93 580 र 98 550 26 440
0: It's 10 o'clock, अहिले 10 बजेको छ।

0: पर्यटन प्रबन्धन का निम्ति शनि जयन्ती पर्व को अवसर पारी शनिधाम सगौरव प्रस्तुत गर्दछ।
1: 11 औं शनि जयन्ती उत्सव विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम रमाइलो मेला साथमा नगर स्तरीय भजन र दुनाटक

0: मोती वॉलेट मा
1: नेपाल को कुने पनी बैंक खाता मा वा 45,000 भन्दा बढी आईएमई काउंटर मार्फत
0: आफन्त को हाथ हाथ मा पुर्याउन आईएमई गरौं
1: 25 वर्ष देखि सारा नेपाली को विश्वास आईएमई गरौं।

0: टाइम चेक।
1: इस समय सूचक का साथमा
2: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी। संपर्क 0556 5563 98 550 7070 र 98 550 7070
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 स्थित भवन। फोन 0556 4940 4993 580 र 98 550 2640।
0: It's 12 o'clock. अहिले 12 बजेको छ।

0: आपकी वॉलेट माँ।
1: नेपाल को कुने पनी बैंक खाता माँ वहाँ 45,000 भन्दा बड़ी IME काउंटर मार्फत
0: आफन्त को हाथ हाथ माँ पुर्याउन IME गरौँ।
1: 25 वर्ष देखि सारा नेपाली को विश्वास
0: IME गरौँ।

0: टाइम चेक
1: इस समय सूचक का साथमा
2: दक्षिण कोरियामा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 98 550 7070 र 98 550 7073
3: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जली हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4934 4493 580 र 98 550 2640
4: It's 8 o'clock. अहिले 8 बजेको छ।

0: माया कुमारी ढकाल शीतलपुर माड़ी पैला घुमा बाबू मैं पैदे खुना घुमा माउंड खुना घुमा क्या यदि दीदी कता गई है घर वरीपरी हे गोठा जाना गोठा छाड़े देखी क्या लड़े देखी तैंड उठा खाता लिया सुताई अभी तैंड फिर तीन छाड़े इस अपरेशन ही करना पर्च इस नौबोका खुन ही हालना पर्चर अब भैन अब एकपल्टी आयुर्वेदिक दवाई में लाना पोर समदीन ने भन्न भाई कपड़ा भी पंचाया बाबू कपड़ा अब आशा छेन भर लाड़े हेरा खाम अभी तैं जई छोरी ने लाई जानूर अभी जई लानु आयुर्वेदिक दवाई ने माच किम बाबू तर मत डाँडो काटे आएँ डाँडो काटे आएँ तर आयुर्वेदिक दवाई ने माचे
1: दीर्घकालीन उपचार को वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली
2: संपर्क लाइन चौक आनंद मार्ग नारायणगढ़ चितवन मोबाइल 98555 9334।

0: आज 2083 जेठ 2 गते शनिबार, जेठ कृष्ण चतुर्दशी 16 मे सन् 2026 नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री विनु शर्मासँगै रिदम सिंहको नमस्कार।
1: यस नेपाली खबरका साथमा नबिल बैंक सधैं सँगै अघि।
2: गुप्तचर निकाय फेरी प्रधानमन्त्री माथत, एमालेमा नयाँ अन्तर संघर्ष, ओली हटाउने गृह कार्यमा शंकर विष्णु।